सुपर फास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से रवाना होने को तैयार है। ट्रेन नंबर 1221A चंडीगढ़ कोचीबिली केरला संपर्क क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस इज रेडी।